0: Radiation, the number one station for the boggle for the Asian. Boggle Asian.
1: क्या हुआ बेटी, क्या बात है?
2: अंकल, अब वो विशाल, विशाल प्लॉट नंबर 13 में फंस गया है।
1: क्या हुआ विशाल को?
2: अंकल, अंकल, वो औरत नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है। अंकल, अगर विशाल को बचा लीजिए, नहीं तो डायन उसे मार डालेगी।
1: अच्छा, अच्छा, एक मिनट, एक मिनट।
3: हाँ, इंस्पेक्टर बलदेव स्पीकिंग।
1: देखिए, मैं गुलमोहर लेन प्लॉट नंबर 12 से सक्सेना बोल रहा हूँ। यहाँ प्लॉट नंबर 13 में एक औरत मेरे बेटे को मार देना चाहती है।
3: क्या कहा, प्लॉट नंबर 13?
1: जी हाँ।
4: प्लीज जरा जल्दी आइए।
3: हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
0: Dev, respect to you, bro. Plot number data, plot number meta. That's what I'm trying to get at. Number meta. But yeah. Press the button correctly. This track, Verdian. The last track, got a message coming. Wang, Lundi the Bawa, Desi Crew, Bunty Baines, on My Roots. This track over here, Verdian, which just means enemies. Explicit lyrics warning. X Fader. So X, who's he on the track with? X Fader. Featuring Rumu Hans. Okay, let's do it. Let's go. Always here to support, man.
5: Radiation, the number one station for the boggle for Asian.
6: One time.

0: Olympi.
1: Radiation.
2: मेरी कुड़ी ओदी सेहत ठीक नहीं, अद्धी रात मिनी स्कर्ट पा के क्लबां च चीका मार के टपदी आ।
3: कोई ना वीरा, असी डिजायर्ड इफेक्ट नू सदूंगे।
4: उपर वाले का ना जफो, किसी ने मैनू बुलाया, 500 पाउंड मैनू दान कर लो, नाल सारे तेरे दुख दूर हो जाऊंगे। तेरी पार्टी हार्ड कुड़ी दा कमरा किथे आ?
2: इत्थे आ उपर, 10 दिनां च एक रोटी दी बुड़की खाई नहीं, बस बर्गर चिप्स चबी जांदी आ।
4: अच्छा, इनिशियल डायग्नोसिस, शक्ल इज रादर पैड़ी एंड टॉप लिप वेरी हैरी। 2000 पाउंड दान कर लो। मेरे नाल जप्पो,
5: द पावर ऑफ रेडिएशन कंपेल्स यू। Random guys off Soho Road compel you. Pervy uncles with x-ray glasses compel you. To leave this girl's forsaken body so she's free to dress sensibly and dance to proper music on
1: Radiation, the number one station for the Bargle Asian.
6: Hi, yeah, I just left the date and I don't know, am I asking for too much? Like, this guy was really cute and he was a musician and he was super powerful.

0: Radiation, the number one station for the Boggle for Asian. Boggle Asian.
1: क्या हुआ बेटी? क्या बात है?
2: अंकल, अब विशाल, विशाल प्रॉटो मंदिरा में फंस गया है।
1: क्या हुआ विशाल को?
2: अंकल, अंकल, वो औरत नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है। अंकल, अगर विशाल को बचा लीजिए, नहीं तो डायन उसे मार डालेगी।
1: अच्छा, अच्छा, एक मिनट, एक मिनट।
3: हाँ, इंस्पेक्टर बलदेव स्पीकिंग।
1: देखिए, मैं गुलमोहर लेन प्लॉट नंबर 12 से सक्सेना बोल रहा हूँ। यहाँ प्लॉट नंबर 13 में एक औरत मेरे बेटे को मार देना चाहती है।
3: क्या कहा? प्लॉट नंबर 13?
1: जी हाँ।
4: प्लीज जरा जल्दी आइए।
3: हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
2: चलिए।
0: The last track that you heard, right, was by Pav Dariaya called Deep in My Eyes. Deep into my eyes. So, what happened, right? I had an encounter, right, about a year and a half ago. It's not a dodgy one, but like literally, it was kind of dodgy still. This brother, Brother Ahmed something, yeah. Is it Sam? I've met two Sams, we call him Sam. So I met the original Sam, who was the chef at Kebabish Original. Sam is Shabid Ahmed Mirzaya. So if I rather than say the whole name out, I'll just call him Sam. He was okay, he accepted Sam.

0: मेरी माँ ने मैंने कैलकुलेटर दिया। आ कोई एमी जे कैलकुलेटर नहीं सीखा, आ टेक्सस इंस्ट्रूमेंट साइंटिफिक कैलकुलेटर सीखा, बड़ी प्रोफेशनल थी। मैं दो तीन महीने वास्ते मंगना सीखा, चंगी तरह माँ ने तंग कर दिया, माँ ने पता सीखा, मेरी आदत नहीं चीजा मंगने। जो माँ ने मैंने इन्ना बड़ा तोहफा दिता कैलकुलेटर, मैं फटाफट जाके उन्हें चप्पी मारी, पता उन्हें की किता, और वापस मैंने चप्पी मारी। हमेशा मैं सोचता सी मेरी माँ मैंने प्यार नहीं करती, मेरिया छोटिया पैरों हमेशा चप्पियां मार रही थी, पर मैनू नहीं।
1: I told my girl I was on radiation.
2: This is the Silla, and you are listening to Radiation, the number one station for the Asian invasion.
3: मेरी कुड़ी ओदी सेहत ठीक नहीं, अद्धी रात मिनी स्कर्ट पा के क्लबां च चीका मार के टपदी आ।
4: कोई ना वीरा, असी डिजायर्ड इफेक्ट नू सदूंगे।
5: उपड़ वाले का ना जप्पो, किसी ने मैनू बुलाया, 500 pound मैनू दान कर लो, नाल सारे तेरे दुख दूर हो जाऊंगे। तेरी पार्टी हार्ड कुड़ी दा कमरा किथे आ?
3: इत्थे आ उपड़, 10 दिन च एक रोटी दी बुड़की खाई नहीं, बस बड़कर चिप्स चबी जांदी आ।
5: अच्छा, इनिशियल डायग्नोसिस, शक्ल इज रादर पैड़ी एंड टॉप लिप वेरी हैरी। 2000 pound दान कर लो, मेरे नाल जप्पो।
6: द पावर ऑफ रेडिएशन कंपेल्स यू। Random guys off Soho Road compel you. Pervy uncles with x-ray glasses compel you. To leave this girl's forsaken body, so she's free to dress sensibly and dance to proper music on
7: Radiation, the number one station for the Bagel Asian. Bagel Asian.
8: Good afternoon. Good afternoon, everyone. Have any of you ever like taken time out to watch a new Conjuring film? So I thought about it. If you want to see real life Conjuring gear, walk around Wolverhampton City Centre, you see proper conjurers in action, and you can learn. So be careful with your wives, sisters, and the rest of that. Your partners out there, because you have some conjured sort of people approaching them, which is not kind of cool. Should you want to send over any tracks to the show, what is going on with my voice? I should be like, hopefully it's kind of like sounding okay, but I'm just testing things. I will be configuring things as I'm going along and tweaking things, but I will kick off the show with the first track here. But oh, that sounds a bit more hello. Why hello, darling, are you well? This track over here is by Sahara. It's called Sorni Any Sorni from Access All Areas, going back to the, is it the 1990s, is it 2001? So basically done straight away already on the show, so let's do it.
7: Radiation, the number one station for the Bagel, for the Asian. Bagel Asian.
9: RDB Remix Sahara, Access All Areas.